0: आत्मा आत्मा आत्मा आत्मा आत्मा आत्मा जी बोलो
1: आत्मा आत्मा आत्मा आत्मा आत्मा जी बोलो
0: नित्य नित्य जग

0: प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम राम राम राम राम राम राम श्री राम राम राम
1: प्रेम मुदित मन से कहो।

हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति।

साई राम डियर लिसनर्स, भगवान हैज स्ट्रेस्ड ऑन मेनी ओकेजन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ ह्यूमन बॉडी. अकॉर्डिंग टू हिम, इट इज अ रेयर ब्लेसिंग दैट इज कन्फर्ड अपॉन अस. इन टुडेज डिस्कोर्स, बाबा स्पीक्स ऑफ हाउ वी शुड यूज द बॉडी टू रिडीम आवर लाइव्स. लेट अस नाउ लिसन टू अ डिवाइन डिस्कोर्स दैट भगवान बाबा डिलीवर्ड ऑन 17th of May 2000 ड्यूरिंग द समर कोर्स on Indian culture and spirituality in Vrindavan, Bangalore.